0: करते आए मम पापा
1: पुतान आई हो मन न गट गट तुम पापा कोई हो के तुम पापा के ताश के तुम को तुम मुतोंगा न लग गुडक इसदा अकुं पापा वा पंगियापन
0: हेलो यावाई अच्छे इमो पापा
1: अच्छे अकुं पापा ना हंटर गरन मिसिंग पा